ष्टेयाता तवा छोता सोवाने हके वेन ष्टेयाता न एता सोवाने आ याय आ याय हे मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया मंग मंग कतरित अम नामे पोषे नोनोवा ओया शेक्यं

तक को पावा के पचे चेता अम छे वे पिछोते पमयं यकय हे क्यों नम्या तालावा ये हे ये हे या हे या हे या को ने नम नवत क्या ओ वे ओ वा कै कौन मो कै कै चाओ यंग।

एक तो इसका की इता में एक एक तो इसका की इता में एक एक तो इसका की इता में एक पत्सो सोक आग नमों बासी एवो से इनकब इया का इमुआ Ibu si inak bu iya ka imua. Ibu si inak bu iya ka imua. Pecusuk ak namun basi.